टोनी हसन श्रीलंका संगीत सा हिंदी जनप्रिय संगीत विशेष स्थानीय जनाद्रेट आदरणीय गायक ओगे सतुटुमत नर्तनमय वेदिका सजीवीकरण गायन शैल्य निशा ओगे बाइला सा अनिकुत गीत लोक प्रसिद्ध नाम बहुत पत्तुना इदास नम से हत्यावत असुवत दशक बाइला संगीत नव शब्द सा सजीवीकरण गिना कलाकार ओगे गीत वोल्ट तिबु सरलत्वे सतुट सा जनताव समग सृजु संबंधे निशा ओगे गायन विशेषत्व गत्ता उत्सव विवाह सा सतुट अवस्था वल्दी ओगे गीत अदत अनिवार्यं वादने वेनो सिंगल संगीत जनप्रिय कल पायनियर्स अतरट ओगे गी नमद अतुलत वेनो टोनी हसन गे संगीत अदत जीवमान सतुट नर्तने सा श्रीलंकीय श्वास मतकरण अमरणीय हंडा